सीआईएन को बाटो तथा मोबाइल एप सीआईएन का नेपाली बाटो सीआईएन को सूचना

0: स्वच्छता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता का थी। वे मेरे स्वास्थ्य सेवा में सर्वसुलभ रूप में देखिए यहाँ को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पर्यटक कौशल्य अस्पताल भास्कर संपर्क करना हार्दिक अनुरोध कराती
1: अस्पताल से सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जाँच कैदा
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हार्ट जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जाँच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध भा पेरालाइसिस को मुख बाना नशा गापैलक हाट कोरा अन्य चलना बिरामीहरूका फिजियोथेरापी तथा एक्युपंक्चर थेरापी विधि बसे उपचार कैदी था
0: बिरामी बिना प्रेसमेंट।

0: सुनने समय हो। लाखों पदार्थों को एक पदक को करीब बनी मानसिक समस्या पढ़ाई में असर पुर्याउन सक्छ। साथी को दबाव में होइन आफ्नो सपना को पक्ष में निर्णय गरौं। तनाव भए खुला कुरा गरौं। समाधान लाखों पदार्थ में होइन लागू पदार्थ टाढा बसौ। स्वस्थ र उज्यालो भविष्य रोजौ। रेडियो गुरुबा कार्यक्रमको सहकारीमा स्वास्थ्य कार्यालय बर्तियाबाट जैविक प्रचारी साथी
1: और

0: डीएस आर विधि सुखा खेत में धान छाने विधि यस आर आई जस्ता पानी पचाने पर विधि अपनाओ
1: खेत समय पानी पर्यो धेरै पानी नजमाओ
0: समूह में पानी पालो नहर सफा रखो पानी को प्रति सुखा बचाओ
1: पानी सरकारी खेती करो उत्पादन बढ़ाओ परिवार समृद्ध बनाओ
0: अपेक्षित आयोजना बेटी प्रक्रिया द्वारा जनहित प्रजाति संदेश श्रेष्ठ एग्रोभेटमा विभिन्न जातका धानका बिउहरू हाइब्रिडमा एमपी 30-30 64-44 क्युरियस 312 आइएमआरएस 57-86 उन्नतको धानको बिउमा राता 4 सावित्री 6-52 श्यामा मन्सुरी राम धान 606 505 301 यामनी जस्ता मसिनो

0: हम जो रहते हो उनको रहते हैं कहीं को जाना हो सबको बताना हो तो कभी बैठो सोचने का कुछ पाँच मिनट जरूरत में जाना हो उनकी सुविधा के गहना पता में रहना पता पर रखना नंबर वन सुविधा के गहना बैठे
1: पूरा दिन चल जाए

झटपट दाल बिरयानी आरा मछली शिकार और फल फूल आयुक्त खाना नियमित रूप से खाए। जंक फूड पर बड़ी संतुलित खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का आधार हो।

स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता का थी मेरे स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वत रूप में टिकी यहाँ स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पड़ता कौशल्य अस्पताल घास में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध करती।

छत्रित खाना खाई, व्यायाम शब्द करी, धूमपान मदिरा मचे दूर रही, तनाव अनाव नियंत्रण करी, आजुक निर्णय टाइम जीवन चला।

0: संध्या सवा छह बजे हमारे संदेश में अपना हम स्वागत बास भैया के संग्राम में हम कुमार है हमारे संदेश आकाश साथ ही एफएम राजापुर पालिक रेडियो फूलपुर एफएम गोलपुर रेडियो खाते मालो जानकी गांव पालिका आगे मसे प्रसन्न प्रसारण की जगह हमारे संदेश का निगरानी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक मसे संतर माध्यम पथ पर आगम कक्षा 11-12 में विज्ञान विषय निःशुल्क चयनदार विद्यार्थी का स्टेशनरी खर्चा समेत चलो राष्ट्रपति प्रक्रिया का सभापति शांता विराज खेती निर्वाचित नवई सिंचाई आयोजन आज सम्म 4 बजे निर्धारित समय में सम्पन्न होना लक्ष्य मार्केट लोका कारण झारक पखाड़ा में चरण प्रक्रियान पर्व बाल बालिका ध्यान प्रभावित और नेपाल भारत समर्थना विकास कूटनीति बहुत ले जाए चाहक परराष्ट्र मंत्री खनाल कर रहा है
1: गर्दिया का दर्शन नगर पालिका 4 स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय बरफाटा में कक्षा 11-12 में विज्ञान विषय निःशुल्क रूप में पदोन्नति अन्य किरदार आर्थिक अभाव के कारण पढ़ा चाह रखे अवसर यह बैठक जहंगा तथा वित्त में विद्यार्थी को लक्षित करते विद्यालय पूर्वी तथा स्थानीय तह मछली समन्वय रेखा निर्देश समय प्रसार सिंह निःशुल्क विज्ञान विषय का कक्षा संचालन करते हुए विद्यालय का प्रबंधक विज्ञानी और पौड़ी जयनगर नास्की नगर पालिका के सहकारी में निर्चार सड़क प्रसार में नगर भिचक प्रत्येक वड़ा मछली तीन जना बढ़ने 70 जना झंडा विद्यार्थियों का निःशुल्क पहला अवधारणा सहित कार्यक्रम शुरू कर दिया था।

diskutují. Velké podjatelé toho pak jenom sám rádi byl se prezident nejasi finanční komplikace a jim se nákladu mám kročit tady, že by mám tady tu pravdu na těta radikální výdny pověstu jsem tě srtárka Montana jsem se nám fikrala a jim se nákladu na stavu pak ty mulian kanto Pálika úplně citatá anupomoň samitika samitá prasmiku a radikálika mytitoma pověd a jim se radina Pryč nevěšen pravdu Uranom Vosho, on také v Sorbutej matru pýta, v Sorbutej pýta lizi, čím by prosím mohla tým hodzáro pejánopě, to slovo pás mi to dalo potěšovatá, zát korul a tala lak a tala hodzár, pán že pozí pýnat rási prosím a tým manšom pana hrba. Zádin, to tala Sorbutej zjeví, Nirmán kompaní usala to porbyty kosehit na vzácej krok mnostel muliantem prihrba kosekola, Dokola půstení na pokud vás kvysel do psil čárky do prise bajano tými to vzorka pěšte jari komon pekrva se jako nirmán kocimma nidim nirmán šiva kompady pěrva ovol urano borčáno se udělí pozáči vratkány vidi manky na antorkanu čurna ek hoca tým se co vladiš mitor vým kvůli nirmán pěkrv santam na vratčo vysa čárek se pásy bajat tělo pěšama vytěrva जय करिस कंटक साल को और को 2082 फागुन सुरगति शुरू कर वायुना को प्रगति हाल सम करीब 7.77% के लगभग प्राकृतिक सहायक पात्र प्राप्त से करे था निर्माण कार्य का कति सुस्ताला कति असंतुष्टि व्यक्त कर बाट को से निर्धारित समय 2085 से मुसांत के द्वारा संपन्न इनामा हासिल कर व्यक्त करके बाद Sarva Matavik Vitale Mira Prokata Vitale Vyvastarpan Samiti Kamir Pasa Nimchada Kul Tim Se Sarkhya Vipala Hukmate Tim Se Inosana Matadana Kharada Nirvasan Parvati Sri Tanaka Pandu Prasad Sautari Sahit Kasa Kutana Nirvasan Nirvasan Samiti Chagaba Vijay Sadasya Kukarma Prat Singh Tharu Gita Tharu Sveshti Tharu Rahvata Nirvasan Tachar Sadasya Kha Pura Kachari Masyata Chetsayan Karna राष्ट्रीय कोरोना कार्यजना और परिशिक्षाएं आयोजन प्रक्रिया में अन्य आर्थिक वर्ष 2083-84 का हर समय को उच्च बजट नियोजन करके चालू आर्थिक वर्ष का तुलना में करीब 30% से बढ़ा के रख बजट अंतर्गत 2055 करोड़ 79 लाख रुपया छुट्टियां की रखो ये रकम मध्य चालू करीब 3 करोड़ 76 लाख पूंजी कर और 2 अरब 52 करोड़ 3 लाख रुपया होगा सर्वाधिक वर्ष 2082-83 में 1 अरब 82 करोड़ रुपया के लग नियोजन कैदिरत आयोजक निर्देशक आयोजना का निर्देशक गोपाल शर्मा जानकारी दिलवाकर पर्याप्त बजट अभाव का कारण विगत में आयोजना समय में संपन्न विषय पर उल्लेख करके निर्देशक शर्मा 65 वर्ष में बजट पर्याप्त पीटी के लग पत्र अब बजट का कारण तनाव निरोधा हो और समस्या से निर्धारित समय में आयोजना योजना भाग का है बाबा 2 से 3 वर्ष के दौरान आयोजना से लक्ष्य अनुसार बजट नियोजन कर समेत बाईस पुष्ट पद बढ़ाकर स्थानीय तह पर करीब 36,000 हेक्टर जमीन सिंचाई सुविधा बिना उद्देश्य सहित निर्माणाधीन आयोजना का भौतिक प्रगति हाल 81% वित्तीय प्रगति 62% पूर्व सूचना अधिकारी शेरमान ने चढ़े बढ़ाकर आयोजना अंतर्गत निर्माण करना 77 किलोमीटर मूल नहर मध्य 71 किलोमीटर निर्माण सम्पन्न हो सकता से 337 किलोमीटर शाखा तथा शाखा नहर निर्माण हो सके बाद पूर्व हरित नहर निर्माण निम्जल पाकर से पश्चिम हरित का काम जारी रहता सिंचित क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत पवन नदिया महाराष्ट्र में 31 किलोमीटर पथ बंधन निर्माण सरकार से 9 किलोमीटर निर्माण का काम बाकी रहेगा 2045 साल से शुरू की लगी आयोजना का निर्माण कार्य 2086 सम्म संपन्न

0: सहित आसपास का क्षेत्र में 18 से 14 का उल्फा में लू का कारण छाला पखला चढ़ो छाला का दरमियान का संख्या पकड़ा 63 में पखला चढ़ छाला का समस्या तथा प्रचार दरमियान महीना क्रम पखलत जिला अस्पताल का सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर संकेत कुमार विशाल का संजीवनी मेडिकल कलेज का मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डॉक्टर रमन तिवारी के गर्मी का कारण दरमियान को संख्या बढ़ने को बाल बालिका सकुशल प्रभावित होने प्रक्रिया बाद स्वास्थ्य कार्यालय पार्टी का प्रमुख श्री पौडेल के अनुसार निर्वाचन सहित जिला का अस्पताल और निजी क्लिनिक में कर्मी में से ग्रामको महीना का संख्या बाट कर्मी चलने रूप में से बस अत्यावश्यक बाहर बाहर निकलो अस्वस्थ पानी तथा शीतल पेय पदार्थ सेवन कर चिकित्सक सुझाव दिल आपका समाचार बताए से
1: परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल नेपाल भारत सम्बन्धमा भू राजनीतिक तथा कृषि विकास कूटनीतिक झलबाट आज नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल भारत सम्बन्धमा पुरानो भू राजनीतिक दृष्टिकोण पछिवक विकास प्रविधि वा आर्थिक उत्पादनमा केन्द्रित लघु साझेदारीहरूको आज बधाई झलक प्रतिरोध भेट उहाँ नेपालमा लघु राजनीतिक शक्ति आइलाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार राजनीतिक बोझमाथि मुक्त हकका परिमाण मुखी कूटनीतिमा केन्द्रीय दलक उल्लेख गरेर उहाँ भारत भ्रमणका क्रममा व्यापार ऊर्जा पूर्वाधार जस्तो

स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा जिम्मेदारी संदेश।

தாய் சூத்திரங்களை தொடர்ச்சியாக வீட்டில் பண்ணுமாட்டையார் தாய்க்கும் சாதா கவர் சொன்னா சாதா கவரும் அவங்க பிரஸ்துத சிங்களா அவங்க பேரும் नमस्कार मैं संतोष सिंबा श्रीपुरा हम पाल मंत्रालय स्वागत है आज हम हमारे पाल को 305 खंड में छो गर्मी के समय में हैजा संक्रमण को जोखिम बढ़ने चिकित्सक बताऊ विशेष हैजा का कारण 5 वर्ष मुनि का बाल बालिका

आज थारू आदिवासी ज्ञान रेडियो कार्यक्रम श्रवण कराई लागल यह कार्यक्रम विषय सलाह सुझाव जिज्ञासा हुई करे हमारे रेडियो गुरबाबा आधिकारिक फेसबुक पेज गुरबाबा लाइव कमेंट कर सुझाव अपन जहां प्यार गुरबाबा रेडियो का फेसबुक और यूट्यूब चैनल में जाकर भी ये कार्यक्रम सुन सकने वाली आज कार्यक्रम ध्यान देता हूँ आगे रखना अपना धन्यवाद देती आज कार्यक्रम से उत्पादन टोली एकराज चौधरी मनोज थारू प्राधिकी संघ या गौरी संघ धन्यवाद देती और पुष्पा